गोबिंद दास तुहार राम कली महला तीजा आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन मजिया वा धाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दो त गावो हरि केरा मन जिनी वसाया कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रो हर नाले साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा कारता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन विसावे सदा नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या नाहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सपागा शब्द वाजे काला जित घर धारिया पंच दूत तो दवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लगे कहा नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो बड पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर।

सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर हया पार पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे। मुंदावनी महला पंजवा थाल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावे जे को पुंचा तिसका हुए उधारो। यह वस्तु तजी नह जाई नित नित रख और तारो। ताम संसार चरण लग तरिया सब।

मंगल सगली खोत, साधक संग मिटा अभिमान, साधक संग प्रगट सो ज्ञान, साधक संग पुछ प्रभ नीरा, साध संग सब होतन बेरा, साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरना कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी, साधक संग एक गोचर मिला, साधक संग सदा पर फुल्ला, साधक संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सबकी देन, साध का संग मनोहर बहन, साध का संग ना कतहु तहवा, साध संग अस्थित मन पावा, साध का संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु का संग महापुनीत, साध संग किस्यो नि बैर, साध का संग ना बींगा पैर, साध का संग ना ही को मंदा, साध संग जान परमानंदा, साध का संग नाही हो ताप, साध का संग तज सब आप, आपे जान साध बडाई, नानक साध प्रभु बन आई, साध का संग न कबहु तहवा, साध का संग सदा सुख पावा, साध संग बस्ते गोचर लहा, साधु का संग अजर सहा, साध का संग बसा थान ऊंचा, साधु का संग महल पहुंचा, साध का संग दृढ़ सब धर्म, साध का संग केवल पार ब्रह्म, साध का संग पाए नाम निधान, नानक साधु का कुर्बान, साध का संग सब कुल उधार, साध संग साजन मीत कुटम निस्तार, साधु का संग सो तन पव, जिस तन ते सब को बरसाव, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध का संग सो बासुर देवा, साधु कह संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध का संग सर्ब थान गम, नानक साध का संग सफल जन्म, साध का संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट तो होत निहाल, साध का संग कलुखत हरा, साध का संग नरक पर हरा, साध का संग इहा उहा सुहेला, साध संग विशरत हर मेला, जो इच्छा सो ही फल पावा, साध का संग ना बिरथा जावा, पार ब्रह्म साध रिद वसा, नानक उदरा साध सुन रसा, साध का संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ, साध का संग ना मनते बिसरा, साध संग सर पर निस्तरा, साध का संग लगे परम बीठा, साधु का संग कड़ कड़ डीठा, साध संग पया करी, साध संग गत पई हमारी, साध का संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जाना, जेता सुने तेता बख्याना, साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद न पाई, श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एकस बिन कोय, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदन लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदन निर्दोख जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी का दृष्ट समान जैसे राज रंग को लाग तोल पवान, ब्रह्म ज्ञानी का तीर्जेक जो वसुदा को खोद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का गुनाओ नानक जो पाव का सह सुपाओ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे महल न लाग जला, ब्रह्म ज्ञानी का मान हुए प्रगास जैसे तर उपरे आकाश, ब्रह्म ज्ञानी का मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच्चे ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जान पहे नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुरा न पहया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी,
ब्रह्म ज्ञान।

0: अष्टपदी संत जनमल करु विचार एक सिमर नाम आधार और पाम समीत विसारु चरण कमल रिदम अवतारु कारण कारण सो प्राप समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ एह तन संचो हुवो भगवंत संत जना का निर्मल बंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठ तवाए सो तन हर सेवा ते पावा जिस सुख नित बांछ बीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनके पावी रोग ना जाए रोग मिट हर अब खुद लाए सर्वन दान में हर नाम निधान जप नानक दरगह प्रवान मन पर बुद्ध हर कनाए दस दस्तावत आवे ठाए सिमर सिमर सदा सुख सुख पाओ पौ बिनसै पूर्ण हुए आस दैन दिस्तावत आवे ठाए ताको बिघन न लाग कोई जाक हृदय बस हार सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पौ बिनसै पूर्ण हुए आस भगत भय आत्म प्रगास तित कर जाय बसा अविनसी कहो नानक काटी जम फासी तात विचार कह जन सचा जन्म मरा सो काचो काचा आवा गवन मिट प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यों रतन जन्म का हुए उधार हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूटन हारे सिमर शास्त वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना सोत मीत कुटाम्बेर बनता इनते कहो कवन तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार आस हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तिस बुझ नाम बिगाना नाम विसार नानक पहचाना गुर की मातु लेह एहाने भगत बिना पौ डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हुए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किलबिख जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार पूसा दर को नाओ सहज सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतरस मैल बिन सजाय हो मैं बेख फैल ओहे अचिंत बस सुख नाल सास ग्रास और नाम समाल छाड़ सियाणप सगली मना सा संग पावा सच तना हार पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दरग जयकार सर्ब निरंतर एको देख कहो नानक जाकर मस्तक लेख एको जाप एको सालाह एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गौ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूरण पूर रहो प्रभ्याप अणक विस्तार एक ते पहे एक अराध पराशत गए मन तन अंतर एक प्राभु रता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत प्रभ आया परया तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाय अष्टपदी जाचक जन जाचक प्रभ दान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्मेश्वर दा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम त्याहो
1: चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नदनीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाव साध कह संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अंदन लिवलाग उड़पागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होय हो दयाल सेवक की नौ सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुनी सरदा सब पूरी रव रहे आसक संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल न पान है सो क्यों बिसरे जे किया जान है सो क्यों बिसरे जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अग्न में राखे गुर प्रसाद को बिर लाल लाख है सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ है जन्म जन्म का टूटा गंड है गुरपुरे तत ए बजाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ए काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरा नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन हो सीशार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होत नास नानक नाम जपो गुणदास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एह सुआओ नेत्र उपेख दर सुख होए मन बिकसे साध चरण धोए भगत जना के मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभ बख्शांत दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पनीत भगत पाए लावे मनीत हम निर्गुण आहर नीचे जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व विकुंठ मुक्त मोह पाए एक निमक हर के गुण गाए मन के राज भोग बढ़ियाई हर के नाम कथा मन पाई ओ भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत फली सु करनी सो बातनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ दियो निवास सर्व सुख नानक परगा श्लोक सार गुण

वर्ष बली जब अकारे कहिना दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब भैर भ्रो के संग कुमाद जब इसका वर्ण चैन ना जावत तब हरख सोह को किसे ब्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परमा आपन खेल आप वरती जा नान करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त को किस को गनी जब एक हर गम पार तब नरक स्वर्ग को कौन उतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाए तब से शब्द कहो किस ठाए जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन निर कवन कद डरे अपन चल तब करने आहार नानक ठाकर गम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तय जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत अगोचर प्रभ एका तब चितर गुप्त किस पूछित लेखा जब नारायण अगोचर या गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे अपन आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पद होता तय भिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निंकार निर्वाण तय कौन गुमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शल शिदर लगत को कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भूख कवन त्रिपतावे करण करावन करने हार नानक कर देगा नहीं सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए भाव मित्र सुत पाई जय सर्व कला आपे परवीन तय भेद देव कहा कोचीन जब अपन आप उतार है तो सगन अब सगन कहाँ विचार है जय अपन ऊजापन अब नेरा ते कौन ठगर कौन कही ये चेरा विस्मन विस्म रहे विस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय छल अशेद अभेद समाया ऊहा किसे बेहब समाया आपस को आपे आदेश ते गुण का ना ही प्रवेश जय एक एक भगवंता ते कौन अचिन किस लागे चिंता जय अपन आप पतियारा ते कौन कदे कौन सुनने हारा वो बेअंत उच ते उचा नानक आपस को आपे पहुंचा जय अव्रज ऊपर पंच अकार ते गुण में किन्नो विस्तार पापुन ते पही कहावत को नर को स्वर्ग बिछावत आल जाल माया जंजाल ओ मैं मोह परम पह पार दुख सुख मान अभिमान अनेक प्रकार की उपख्यान अपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जय अवगत भगत ते आप जय पसरे पसार संत प्रताप दोहु पाक आपे तनी उनकी शोभा हो बनी आपे कौद करे अनंत चोज आपे रस भोगन निर्जोग जिस पावे तिस आपन नाय लावे जिस पावे तिस खेल खिलावे बेशुमार अथागंत अतोले ज्यो बुलावो त्यो नानक दास भूले श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार नानक एको पसरिया दूजा कह दिष्टा राष्ट्रपति आप कदे अब सुनने हार आपे का विस्तार जात पावे दशिष्ट उपाय अपने पाने लय समाये तुम ते भिन्न नहीं किश होए अपन सूद सब जगत पर होए जाको प्रभ जी आप बजाए सच नाम सोई जन पाए सो समुद्र सी तत् का बेता नानक सगल सिष्ट का जेता जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल नाथ को नाथ जिस राखे तिस कोहे न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे ते तज अवर कहाँ को जाए सब सर एक निरंजन राय जी की जुग जाके सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बे अंत पार नानक दास सदा बलिहार पूरन पूर रहे दयाल सब ऊपर होत कृपाल अपने घर सब जाने आप अंतर जामी रहो ब्याप प्रतपाले जी अनुभव पात जो जो रस तिसे त्याद जिस पावे से लहे मिलाहे भगत करे हर के गुण गाए माने अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक एक जान्या जन लागा हर एक नाए तिसकी आस न बिरथी जाए सेवक को सेवा बन आई हुकम बूझ परम पद पाई इसते ऊपर नहीं विचार जाके मन बसया निंकार बंधन तोर पे निर्वैर अंधन पूजे गुरु के पैर ए लोक सुखिए पर लोक सुहेले
ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਕਰੋ ਆਨੰਦ, ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਖਾ ਕਰੋ ਉਧਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਪ੍ਰਾਣ ਤਰਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਓ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਵੇਖੋ ਨੇਰਾ, ਮਿਟੇ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸੇ ਅੰਧੇਰਾ। ਸੋਨੇ ਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਸਾਵੋ, ਮਨ ਇੱਛੇ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੋ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਇ ਲਿਓ ਸਵਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮੇ ਅੰਤਰ ਉਰ ਧਾਰ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸਾਚ ਪਰੀਖਿਆ। ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਜਪੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਨ ਤੇ ਪਹੁ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰੋ ਵਾਪਾਰੀ, ਦਰਗਾਹ ਨਿਭੇ ਖੇਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਏਕਾ ਟੇਕ ਰੱਖੋ ਮਨ ਮਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਤਿਸ ਤੇ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਕੋ ਜਾਏ, ਉਭਰੇ ਰਾਖਣ ਹਾਰ ਤੇ ਆਏ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੇ ਤਿਸ ਨਾਹੀ ਦੂਖ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਮਨ ਹੋਵਤ ਸੁਖ। ਚਿੰਤਾ ਜਾਏ ਮਿਟੇ ਹੰਕਾਰ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਕੋਇ ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰ। ਸਰੀ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ। ਮਤ ਪੂਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਉਦ੍ਰਿਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ, ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ। ਤਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੇ ਸੋਹਤ ਨਿਹਾਲ।

राम भगत न कीनी, मन रहे कौन को मत लीनी। परदारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी रहाओ। मुग्ध पंथ जाने होते नाहिन, तन जोर निको ताया। अंत संग काहू नी दीना, बिरथा आप बंदाया। ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो, नहीं उपजियो किस गयाना। काढ़ ही माए निरंजन तेरे, तै खोज तो दयाना। बहुत जन्म परम तै हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताई। बहुत जन्म परम तै हारियो, अस्थिर मत नहीं पाई। मानस दे पाए पद हर भज, नानक बात बताई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरबत संगतां नूं जी आयां, शामां दे दीवान दी हासियां भरियां ने। शब्द चौंक जी कीर्तन सोधरा साहब दे पाठ उपरंत मनहास परिवार वालों बच्ची दे आनंदकार जी आरंभता ते आनंदकारी सफलता की याचना करदे होया, ते गिल परिवार वालों शुकराने वजो बच्चों की चढ़ती कला लई सुखमणी साहब के पाठ आरंभ होए। संपूर्णता तो उपरंत परिवार की चढ़ती कला लई, बच्चों की चढ़ती कला लई अते आनंद कार्य की सफलता की याचना करदे होया गुरु चरणा विच अरदास बेनती हुई। पवित्र हुक्मनामे सगुण ने बख्शे, जो आप श्रद्धा ने सरण कीते ने। गुरु कृपा करे सब नूं चढ़दियां कला बख्शन, सिर ते मेहर भरिया हथ रखन। जो मरहास परिवार बच्ची के आनंद कार्ज आरंभ किए जा रहे हैं, उदाता मेहर करे बच्ची के कार्यों में संपूर्ण सफलता बख्शन। आने वाला समा बच्ची लिए प्रेम प्यार अथवा चढ़ती कला और खुशियां भरे जीवन के सतगुरु जी बख्श के निहाल कर, परिवार के सिर ते मेहर भरिया हथ रखन। आरंभे कार्यों सब संपूर्ण कर जी, गिल परिवार के सिर ते मेहर भरिया हथ रख, बच्चों चढ़दियां कला गुरसिखी जीवन माता पिता आज्ञाकारी बच्चे शुभ गुण बख्श के निहाल कर। सो परिवारों बहुत बहुत बधाइया, गुरु कृपा करे परिवार सतगुरु चढ़दी कला बख्शिश कर। परिवार वालों अज के समुचे समागम कीर्तन गुरु के लंगर की सेवा भी है, सब न बेनती शगन की कृपालता करनी। और सरबत संगत परिवार वालों धन्यवाद, जो जो परिवार सदे पत्र के हाजिर होए ने सतगुरु सब न चढ़दी कला बख्शन। सुहाओ शामा दे दीवान की रंभता भाई साहब भाई दिलबाग सिंह जथा कीर्तन सरवण करे, बड़े प्यार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

अंत संग काहू नहीं दीना, बिरथा आप बधाया। ना हर भज्यो ना गुरजन सेव्यो, ना उपज्यो कछ ज्ञाना। घट ही माहे निरंजन तेरा, तैं

छोटा ही बोलना है। वाहे गुरु जिन्हें जिन्हें होता सारे बोलिया करो। वाहे गुरु।

चरण गहो बको सुबरसना दीजह प्राण अकोर कोई जान हरस्यों देवा जोर। चरण गहो बको सुबरसना दीजह प्राण अकोर रहाव मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंच सुधा संजोर। यार रस में मगन होत कृपा ते

प्राप्त हुई। ऐसा सतगुरु लोड़ लो जिदो पाइय सो सोए, अस संघार सुख बसै, ज्योति भाव सो हुई।

एक जोत दोई मूर्ति सद मिलावा होई श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लुबाणी सेवा करे बिडाणी अपना धर्म गवावे बूझे नाही आनंद दुख बिहानी।

मैं रहना बिछड़ जाई। जोग जगरना सु करे अवरना करना जाए, त्री उचने मेलियान सदगुर पन्ने पाए, आपे घर कराई सी अवरना करना जाए। मन तरत रंग स्यों मैं तज विकार, एनस हृदय रव रह निरपो नाम निरंकार, नानक आप मिलायन पूरे शुद्ध पार। श्री राग माला तीजा गोविंद गुण निदान है, अंत न पाया जाए, कथने कथे कथने बदनी न पाई हमें विचों जाई। सतगुर मिलिया सद पैर चै, आव सह मन आई भाई रे, गुरमुख बूजै कोई बिन बूजै, कर्म कमावणे जन्म पदार्थ कोई। राव जिनी जाख्या तिनी साधे पाया, बिन जाख्या परम पुलाई। अमृत साचा नाम है कहना कछू ना जाए, पीवत हूँ परवान पिया पूरे सुध समाई। आपे देता पाइए होर करना किछू ना जाए, दीवन वाले गए हथ दात है गुरु द्वारे पाई। जिहा की तोन त्या हुआ जिहे कर्म कमाए, जात सत संजम नाम है बिन नावै निर्मल ना होई।

माया जीवड़ दुख नहीं सब जगे संसार गुरमति जग पाइय सच नाम और तार जिसनो मिले सो मिले हाँ तिस बलियारे जाऊं मन भक्ति रतिया सच बाणी निज थाउ मन रते जे वारती हर गुण सचे गाऊ नानक नाम ना विसरे सचे माई समाऊ।

था। नाम मिले मन तृप्ति है, बिन नावे त्रिक जी वास, कोई गुरमुख सज्जन जी मिले, मैं दसे प्रभु गुण दास। हाँ तिस बैठो जो खनी है, मैं नाम करे प्रगास, मेरे प्रीतमा जीवा नाम ते आए, बिन नावे जीवन नाथी है। मेरे सतगुरु नाम दृढ़ाई रहा, नाम अमूलक रतन है, पूरे सतगुर पास, सतगुर से वे लगे आ, कर रतन देवे प्रगास।

लागी साज परीत, चरण भजे पार ब्रह्म के सब जब तब तिन्ही कीत। रतन जो है रमण का अमृत का नाऊ, सुख सहजानंद रस जन नानक हर गुण गाओ। श्री राग महला पंजवा।

हर गुण गाओ मनाओ सतगुर से प्यार, क्या थोड़ी बात गुमा रहा जैसे रैन प्राणे जे

कोई। देख दर्शन मन से धारे पास अगले जाई, हाथन के बरड़ हारण जे गुर की पेरी पाई। सा संगत मन वसै सागर गाना, सेवड़ भागी नानका जिना मन हर पाव। श्री राग महला पंजवा। सांच हर तन पूज सतगुर छोड़ सगल बेकार,

मिलाई। कस कस बटी लाई है पर कह हित जित लाए, खोटे टो ना पैनी करे खजाने पाई। आ संदेशा दूर करियो मल, जाय समाए सुखे को मांगे सब कोई, दुख ना मांगे कोई। सुखे को दुख कला मन को पूजना होए, दुख सुख सम कर जानिए शब्द भेद सुख होए। वेद पुकारे बाचिए बाणी ब्रह्म व्यास, मन जन सेवक साधगा।

Pela bena pera tanu soi gariye jo ban bad kuar na maane sukh se jide bin pir bad sigar dukno jo hakne na kar sej patar मन रे राम जपत हुए बिन गुरु प्रेम ना पाई है सद मिले रंग हुए राव गुरु सेवा सुख पाई हर वरसे सिगार सच माने फिर से जड़े गूड़ा हित पार गुरमुख जान सियाणिया गुर मेले गुण चार सच मिलो वर कामणे फिर मोहे रंग लाए

arde. Vida व्यासे कोई राव ज्ञान ध्यान धन जानी है अगत कहा वै सोए सफल्य बिरखरिया बल छाव कनेरी होई।